मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।

अपने मालिक से उठ करके फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर, रूह को नूर तक्वा से तू शाद कर, नफ्स दुश्मन है दुश्मन को नाशाद कर, हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर, हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर, सर को चौकट पे उनकी तू सज्जाद कर। हम्द से इस जुबां को तो हम्माद कर, सर को चौखट पे उनकी तो सज्जाद कर, अपने मालिक से उठ करके फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर, अपने मालिक से उठ करके फरियाद कर, दिल को सजदे में रो रो के आबाद कर। अल्लाह तबारक व तआला मस्ट बिकम प्लीज्ड विद अस, मस्ट मेक अस हिज एंड ही मस्ट बिकम आवर्स, देन ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है,